वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना हेमलता कोनवड़ के स्वर में।

हेमलता कोनवड़ ने गाई संत कान्हो पात्रा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुहासिनी कोरटकर के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना।

संत जनाबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुहासिनी कोरटकर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास लिखित ये भक्ति रचना चंद्रशेखर गाडगिल के स्वर में, जिसे स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनीस ने।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग नंद पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार हैं गौरी राय चौधरी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर हैं पिंटू रॉय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to Khayal in the Rag Nand. Our artist is Gauri Roy Chaudhuri. Accompanying her on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Pintu Roy.

0: अभी आप राग किरवाणी पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थी अनिमा दास, आपके साथ तबले पर थे अशोक राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Kirvani. Our artist was Anima Das. Accompanying her on the tabla was Ashok Roy Choudhury. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गायन. प्रस्तुत है राग बिहाग. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं कैसे सुख सोए. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज रहो मोरे प्यारे रघुवीर.
2: Listen to Hindustani classical vocal recital by Vidushi Padmavati Shaligram. She is presenting Rag Bihag. Vilambit Bandish set to Ektal. Bol, Kaise Sukh Soe. Drut Bandish set to Teen Tal. Bol, Aaj Raho More Pyare Raghuveer.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग बिहाग। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वालावलकर। अब आप सुनिएगा विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं रस कान्हारी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बंसी वाला कान्हा।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग बाय विदुषी पद्मावती शालिग्राम। अकंपनिंग हर ऑन तबला वॉज पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन हारमोनियम वॉज पुरुषोत्तम वालावलकर। Continuing the concert, now listen to Raag Durga by Vidushi Padmavati Shaligram. Vilambit Bandish, set to Teen Taal. Bol, Ras Kanahari. Drut Bandish, set to Teen Taal. Bol, Bansi Wala Kanha.

0: अभी आप विदुषी पद्मावती शालिग्राम का गाया राग दुर्गा सुन रहे थे। तबले पर संगत किया था पंडित राजेंद्र अंतरकर ने, सारंगी पर लियाकत अली खां और हारमोनियम पर थे बबन मांजरेकर। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल बाय विदुषी पद्मावती शालिग्राम। The accompanying artists were Pandit Rajendra Antarkar, Liaquat Ali Khan and Baban Manjrekar on tabla, sarangi and harmonium respectively. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मल्लिका बनर्जी का गाया राग ललित. विलंबित ख्याल एक तालमनी बने, बोल हैं रैन का सपना मैं कासे कहूं, और द्रुत ख्याल तीन तालमनी बद्ध है. बोल हैं जोगिया मोरे आए. तबले पर आपकी संगति की है वीन पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Mallika Banerjee. First listen to Rag Lalit. The Vilambit Khayal is said to Ektal. The words are, Rain ka sapna mein kaise kahun. The Drut Khayal is said to Teental. The words are, Jogiya moe aaye. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi.

0: लल सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग अहीर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दीनों करतार। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं गरीब नवाज जग निस्तार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग ललित बाय मल्लिका बैनर्जी। नाउ लिसन टू राग अहीर भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल। द वर्ड्स आर दीनों करतार। द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर गरीब नवाज जग निस्तार। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी।

0: अभी आप मल्लिका बैनर्जी का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग अहीर भैरव बाय मल्लिका बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण स्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी से ध्रुपद धमार गायन। प्रस्तुत है राग नट भैरव, इसमें आलाप तथा चौताल में निबद्ध ध्रुपद प्रस्तुत है। बोल शंकर हर महादेव। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी। ही प्रेजेंट्स राग नट भैरव इन विच आलाप एंड ध्रुपद सेट टू चौताल। बोल शंकर हर महादेव।

ये था राग नटभैरव। आप सुन रहे हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं प्रकाश शेजवल। अपना गायन जारी रखते हुए पंडित सुखदेव चतुर्वेदी अब प्रस्तुत करते हैं राग बिहाग। इसमें आलाप और धमार प्रस्तुत है। बोल नवेली मधमाती चली आई। दैट वॉज राग नटभैरव। यू आर लिसनिंग टू ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी। ही इज अकंपनीड ऑन पखवाज बाय प्रकाश शेजवल। कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल पंडित सुखदेव चतुर्वेदी नाउ प्रेजेंट राग बिहाग इन विच ही प्रेजेंट्स आलाप एंड धमार। बोल नवेली मधमाती चली आई।

ये था राग बिहाग। आप सुन रहे थे पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का ध्रुपद धमार गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवर। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग बिहाग। यू वेर लिसनिंग टू ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय पंडित सुखदेव चतुर्वेदी। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwal. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनुरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दोलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय

0: अभी आप राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलोई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग गोरख कल्याण। आवर आर्टिस्ट वाज सुनील चट्टोपाध्याय। Accompanying him on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay, and on the harmonium was Chittaranjan Dolui. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Rageshri. Our artist, Shubhajit Mojumdar.

0: अभी आप राग रागेश्री पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist was Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला तथा पखावज की युगलबंदी. तबले पर है रविनाथ मिश्र तथा पखावज पर है राजखुशी राम. आप सबसे पहले तीन ताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

अरे सलंबोदा सोहे भुजा चार इत दंत चंद्रमा ललाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश तारद ध्रुवपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे नट धरात धर धर क्रधान दिन दिन दिन नागे नागे नागे धन धन तीन तीन ताके ना पादरी गण धृक धृक दिन दिन दिन आगे दिना ताक्रधान कृतक धरान तरान दा कृतक धरान तरान

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे तबला तथा पखावज की युगलबंदी। कलाकार थे तबले पर रविनाथ मिश्र तथा पखावज पर राजखुशी राम। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया धमार ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे तबला तथा पखावज की युगलबंदी। कलाकार थे तबले पर रविनाथ मिश्र तथा पखावज पर राजखुशी राम। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्र. राग है यमनी बिलावल. इसमें आपने आलाप जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः रूपक एवं तीन ताल में निबद्ध हैं. आपके साथ तबले पर संगत की है उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ने. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग यमनी बिलावल इन विच ही रेंडर्स टू कंपोजिशन सेट टू विलंबित रूपक ताल एंड धृतगत इन तीन ताल. द एकम्पेनिंग आर्टिस्ट इज उस्ताद इस्माइल दद्दू खान ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे राग यमनी बिलावल। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। यह है रागम DTH पर, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग जयंत मल्हार। विलंबित तथा द्रुत दोनों गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग जयंत मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में राग जयंत मल्हार। कलाकार थे पंडित गोपाल शंकर मिश्र। तबले के साथ संगत कर रहे थे पंडित यदुनंदन गोस्वामी। हर पल हर समय DTH रागम के लिए ये थी आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गोपाल शंकर मिश्र। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी. विलंबित गत छप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्णा. द विलंबित गत इज सेट टू झप ताल and Dhrudgat is set to Teen Taal. He is accompanied by Nawab Ali on the tabla.

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली ने।
1: यू लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग दरबारी बाय पंडित गोपाल कृष्ण। वी नाउ प्रेजेंट राग श्याम कल्याण। द विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला।

0: अभी आप पंडित गोपाल कृष्ण का विचित्र वीणा पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ विचित्र वीणा रिसाइटल इन राग श्याम कल्याण बाय पंडित गोपाल कृष्णा। ही इज अकंपनीड बाय नवाब अली ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आर आर पांचाल के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे आर आर पांचाल के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार ने। संगीतकार है आनंद मोड़क।

रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार के स्वर में आप सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। संगीत था आनंद मोड़क का। आइए आप सुनते हैं पंडित राव नगरकर के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना।

संत तुलसीदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे पंडित राम नगरकर के स्वर में। आइए आप सुनते हैं संत मीराबाई की रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में संत मीराबाई की रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी बबन राव नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत एकनाथ महाराज की, स्वर है मालती पांडे का।

शरद जांबेकर ने गाई। संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। आइए आप सुनते हैं रेखा रायरी कर किस्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे रेखा रायरी करके स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है फिर से एक बार संत एकनाथ महाराज की वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीत दिया है DV करंदीकर ने।

डीवी करंदीकर के संगीत में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, स्वर था वसंतराव देशपांडे का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। अब सुनते हैं आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गाई रचना समूह सुर में।